0: यो BFBS गोर्खा रेडियो हो।
1: रेडियो नेपाल हो। अब सुन्नुहोस् सृजना खत्री हाउडे मायाको आवाजमा नौटंकी माया।
2: मिस्टर आरजे।